इतना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी, जपजी साहब दी इतनी महानता है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया है, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझ रहे हां। हालांकि साहिबां ने पावन

कुछ पंडिता ने बहस की थी। कहने लगे महाराज असी मत्थे ते टिक्का लाने गंगा किनारे बैठ

कि सोच जड़ी है मन दी है। मन सुचा नहीं तो शरीर किवें सुचा हो सकता है। साडे देश विच कर्म कांडा नूं और बाहर दी सुचता नूं बड़ी अहमियत दिती जांदी। इत्थों तक कई बारी देखदे हां कि कई धार्मिक स्थानां विच हरी जन नहीं जा सकदे। इह कहा जांदा है कि धार्मिक स्थान अपवित्र हो जाएगा, पर एक गल समझ च नहीं आती, जे नीवी जात वाले दे जान नाल धार्मिक स्थान अपवित्र हो सकता है तो फिर वह धार्मिक स्थान किसे नूं पवित्र किवें करेगा। सगा यह कहना चाहिए कि इत्थे जिहड़ा आवेगा वह भी पवित्र हो जाएगा, नीच तो ऊच हो जाएगा, पर जे आण दे नाल धार्मिक स्थान ही अपवित्र हो जाते हैं तो फिर उत्थों किसे नूं मिलेगा कि ए परम ए वहम सतगुरां ने कढ़न वास्ते सिख धर्म दी नीह रखी सी। ठीक है, जे किधरे जाण दी इजाजत नहीं ते तुसी मेरे कोल आओ, इत्थे जात पात ऊच नीच दा कोई सवाल नहीं। ऊच नीच करके

कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रशादा नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर सोतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो। इत्थे तन गुरु नानक

जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वख हन, पहरावे भी वख, देश भी वख, और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

राम रहीम कहाईंदे। एक नाम हिंदू राम कहंदा है, मुसलमान रहीम कहंदा है। राम रहीम कहाईंदे एक नाम, परमेश्वर एक है उदे नाम कई। हिंदू राम कह रहे हैं, मुसलमान रहीम कह रहे हैं, पर वो एक है। दोए राह पुलाने, पर देखो ये दोनों किवें सच दा राह भुल गए ने, और परमेश्वर दे नाम ते एक दूसरे नाल झगड़ा पै कर।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा के उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने ये हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा भी रल के इन्हां तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।